आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इतना गली जंजीरिया एक तुरे चढ़े बिसार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करदा जिंदगी फिर तस्वीर करनी।

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितो ज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजै तिर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण तखत राजा सो बह जे तख्त लायक होई जिनी सच पछाणिया सच राजे सेई तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादि है पी होसी सहसा परम चुकाया पांज प्याले पांज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी दाल भंजन गुर सूरम बड़ जोदा बहु पर उपकारी दाल भंजन गुर सूरम बड़ जोदा बहु पर उपकारी
ज्यों जानहु त्यों राख, हर प्रभ तीरिया केते गनो असंख अवगण मीरिया। असंख अवगण खति फिर नित प्रत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए। लोक करत विकार बिखड़ी, प्रभ नीर हूँ ते नीरिया।

सो कहो टल गुर सेवी एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसम दी मूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन।

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल, रहाओ आन दिन नानक नाम त्याय, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता, आन दिन नानक नाम त्याई,

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: Thank you.

हार के तख्त बहाली है निज घर सदा वसी जय निज घर।

साधना से धैया तुल धानी के तुझैया धूम तार को तरैया ध्यान ताको सदा लाइया आओ के बढ़िया एक नाम।

ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

Thank you.

Mm-hmm.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.

ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ।

खेल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरणे

0: भगवन्ना
1: तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेल राखो रखण हार दयाला।

पौड़ी वड़ी होंडा पार तेरा मर्तबा, रंग परंगना नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब किश तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर रंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आ गए बिन बता, सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत देव सुरात दुई दाई दाया, खिले सगल जगत चंगे आया बुरे आया, वाचे धर्म हदू करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गैम शकत का, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी ना, जिनी नाम ते आया गैम शकत का, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार।

सोहे बंक द्वार सगला बनहरा मेरी सेजड़ी आडंबर बनया मन आनंद पया रब्यावत सुनया अंद

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ।

करता कर आया, करता कर आया।

0: ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾ

Thank you.

सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वडियाइया। तुद विण सिद्धि किनै न पाइया, करम मिलै ना ही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलियह दुख। सो क्यों विसरै मेरी माय, साचा साहिब साचै नाय रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होआ ना को होय। जे वड़ आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनौ करौ गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव। मोकौ राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहिरे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाई। ताका रिजक आगै कर धरिया, मेरी माधव जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भउ करिया। उडे उडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरी शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धा।

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवह हर ते आवह तुद जी, से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक क्रह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी, तू सब नी त्याया। जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया, सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पई ले निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ नाहौ जती सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया,

ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहौ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट की अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

जानत महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी ओत पोज खान बहुरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

गौर पूरन नारायण है, गौर दयाल समरथ गौर, गौर नानक पतत उदारण है, पाओ जल बिखम असगाह, गौर बोहे थै तारे अम, नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या, सतगुर नानक देओ है परमेश्वर सोई, गुर अंगद गुर अंग ते ज्योति ज्योत समोई, अमरा पद गुर अंगद होए जान जनोई, गुर अमरह रामदास गुर अमृत रस पोई, रामदासह अर्जन गुरु

नहो गौर गोविंद होई गौर मुख सुख फल परम रस सत संग अलोई गौर गोविंद बाहरा दूजा नहीं कोई बाबाणी पीड़ी चली गौर चेले परचा परचाया गौर अंगद गौर अंगते गौर चेला चेला गौर पाया अमरदास गुर अंगद सतगुर ते सतगुरु सदाया गुर अमर रामदास गुर गुर अमर रामदास गुर

जना हूँ आदि पुरख आदेश कराया सुज्जै सोज ना लुकै लुकाया सुज्जै सोज ना लुकै लुकाया सो कहौ टल गोर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूरे अर सहु कुर।

निरपौ नाम ते आया अटल सुख नानक पाया।

ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ।